दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

को प्यारा प्यारा रामायण कथा सबको प्यारा द स्टोरी ऑफ द रामायण इज मोस्ट प्लीजिंग टू ऑल इट ऑफर्स द पाथवे टू हैप्पीनेस एंड द मेनी सिनेरियोज वी फाइंड देयर इन सर्व टू कीप अस ऑन द राइटस ट्रैक पिता पुत्र का प्रेम दिखलाए साक्षी है राम भगवान हमारा रामायण स्पीक्स ऑफ द लव बिटवीन अ सन एंड हिज फादर And this is demonstrated by Shri Ram and the King Dashrath. Bhratri Prem Ramayan Gave. Of course, the Ramayana sings the love between brothers, as exemplified by Lakshman and Bharata. Pativrata Dharma Ramayan Batlave. It reminds us of husband and wife relations. And this relation is examined carefully in this beautiful scenario where Anusuya speaks to Sita. Pinda karm ramayan dikhlaye, sakshi hai Bharat aur Ram hamara. Of course, emphasis is placed on Pitri Yagya in reference to the story of Ramayana with such performance by Shri Ram and

दुर्गा आदि शक्ति है, निर्बल निर्धन मानव का बल है माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के जितने नाम और रूप उल्लेखित हैं, सभी नाम और रूप सर्वथा और सर्व स्थानों पर पूजित हैं। माता दुर्गा देवताओं की शक्ति में है, भक्तों की भक्ति में है।

संगीत 106.1 FM, मोर देन जस्ट म्यूजिक, दिस इज अस. वेलकम टू पंप एंड वाइब विद स्टेफन एक्स एंड ऋषि राम.